0: The station with the
1: best music.
2: तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रिक्वेस्ट आओ।
3: एक सजेशन है जो पीएम को पसंद आया।

0: प्रसार अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छ नौलो छ सरगम आज कोही

0: दीवार के पीछे बैठे?
1: दीवारों के भी कान होते हैं।
0: ओहो, आप यूं ही बदगुमा होते हैं।

0: स्टार अन भक्तपुर एफएम स्टार अन भक्तपुर एफएम
1: नौलो नौलो बतास छा नौलो छ सरगम आज को ही

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: पापा, मुझे नींद नहीं आ रही है।
1: मुझे भी नहीं आ रही।
0: पता नहीं पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
1: मुझे भी बहुत डर लग रहा है।
0: पापा, लोरी सुनाओ ना।

0: स्टार अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छ, नौलो छ सरगम आज कोही।

0: people, thank you so much for watching. I hope you've enjoyed the video. I feel really, really proud. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि ये गाना कंपोज और इतना ब्यूटीफुल जो लिखा है, इतना ब्यूटीफुल जो कंपोज किया है, वो मेरे भाई टोनी कक्कर ने किया है. I feel really proud to share this with you all. And this was for all the fathers in the world, especially for our father. Mr. Jay Kakkar, पापा ही आपके लिए था. एंड फॉर ऑल फादर्स इन द वर्ल्ड, जितने भी बच्चे हैं उन सब की तरफ से, उन सारे पापाओं को था कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. एंड जितना प्यार आप सबने, सारे पापाओं ने हम सारे बच्चों को दिया है, उसके लिए हम आपको कभी भी जितना भी थैंक यू करें उतना कम है. थैंक यू सो मच. एंड माई पापा, आई लव यू. Love you, love you, love you, love you. Always be there with us. And all you guys watching the video, please like, comment, subscribe, share. I really need your support. Me, Neha Kakkar, my brother Tony Kakkar. If you like our music, please subscribe. Please like our page on Facebook. Yeah. So thank you so much, guys, for watching. This is Neha Kakkar saying bye bye to you. Love you.
1: इन्हें तक आपके सर पे रखा. तुम्हें पता है मैं यहाँ का इंजीनियर हूँ और तुम्हारे जैसे सैकड़ों मजदूर मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, और तुमने बीड़ी पीने के लिए बोझा मेरे सर पे रख दिया. अगर मैंने बॉस को कंप्लेंट कर दी तो जानते क्या होगा?
2: क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन शाम को जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ पैर चले जाएंगे. सोच लीजिए.

0: स्टार अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छ, नौलो छ सरगम आज कोही।

0: सुमत हमसे खुद से हम।
1: स्टार ऑन भक्तपुर FM। स्टार ऑन भक्तपुर FM।
2: नौलो नौलो बतास छा, नौलो छसर

0: स्टार अन भक्तपुर एफएम स्टार अन भक्तपुर एफएम
1: नौलो नौलो बतास छा नौलो छ सरगम आज को ही

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: भक्तपुर FM 105.4 MHz।
1: यो हो भक्तपुर FM 105.4 MHz। भक्तपुर FM सुन्दै गर्नुहोला।
2: वक्र